0: मॉर्निंग छत्रपती संभाजी नगर आरजे अदनान तुमच्या सोबत आहे इन द शो. अरे भाई उठ जाइए नींद से नहीं अपने ख्वाबों से उठिए क्योंकि आज का दिन आपके नाम करते हैं ना यार. मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट और आप सुन रहे हो MGM 90.8 FM जहाँ हर सुबह होती है ताजगी से भरी. कितनी अजीब बात है ना, सुबह होती है लगता है आज कुछ नया होगा और यकीन मानिए हो भी सकता है क्योंकि हर सुबह एक मौका है कुछ अच्छा सोचने का, कुछ अच्छा करने का और सबसे जरूरी खुद से प्यार करने का. जस्ट जिंदगी से प्यार किए जा. तो चलिए आज की शुरुआत करते एक छोटे से पॉजिटिव थॉट के साथ. अगर सूरज हर रोज बिना शिकायत के उग सकता है तो हम भी हर दिन बिना हार माने शुरुआत कर ही सकते हैं ना. तो जो लोग आज लेट उठे चाय पीजिए, मुस्कुराइए और खुद से कहिए मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. और हाँ, जो पहले से जग चुके हैं, अरे वाह क्या बात यार, आप तो पहले से ही जीत गए मेरे यार. चाय के कप की चुस्की के साथ आज के शो का आगाज भी करते हैं. तो आइए इस महफिल को सजाते हैं जहाँ पर ढेर सारी बातें होगी, बहुत सारी बातें होगी और बढ़िया सी नगमों का साथ भी होगा. इसी के साथ इंफोटेनमेंट के साथ एंटरटेनमेंट की सौगात होगी. सो स्टे ट्यून्ड एंड गुड मॉर्निंग विद आरजे अदनान.
1: Only on MGM 90.8 FM.

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। रोज एक फोन आता है और फोन उठाते ही एक ही सवाल, बेटा खाना खा लिया। कभी कभी ये सवाल इतनी बार बार सुनने को मिलता है कि हम बस कह देते हैं हाँ माँ खा लिया ना, चाहे खाया हो या ना खाया हो। लेकिन जब पढ़ाई नौकरी या जिंदगी हमें घर से दूर ले जाती है तब समझ आता है कि माँ का ये सवाल सिर्फ खाने के बारे में नहीं था। वो पूछ रही होती थी तुम ठीक हो ना, किसी बात की टेंशन तो नहीं, अपना ख्याल रखते हो ना, मेस के खाने से पेट भरता है। वैसे यार माँ के हाथ का खाना तो खाना ही होता है, वो सिर्फ पेट नहीं दिल भी भरा देता है। फिर एक दिन फोन नहीं आता, माँ किसी काम में होती है या हम इतने बिजी हो जाते हैं कि मिस कॉल हो जाता है और अजीब सी बेचैनी होने लगती है। तब एहसास होता है कि जिस सवाल से कभी चिढ़ जाते थे वही सवाल हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी तसल्ली थी। इसलिए आज अगर माँ का फोन आए और वो पूछे बेटा खाना खा लिया, तो बस हाँ कहकर फोन मत काट देना, थोड़ी देर बात कर लेना, उनसे भी पूछना माँ आपने खाना खा लिया, क्योंकि माँ अक्सर सबको खाना खिला देती है पर अपनी भूख सबसे आखिर में याद करती है। और यकीन मानिए इस एक सवाल से उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती है उसका कोई मोल नहीं होता। समझे,
1: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

लेट्स टॉक अबाउट हेल्दी लाइफ, क्योंकि हेल्दी रहोगे तो वेल्दी रहोगे। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम सब ना तो अपनी बाइक या कार की रेगुलर सर्विस तो करते हैं ना, सभी लोग करते होंगे। थोड़ी सी आवाज आए तो मैकेनिक के पास जाते हैं, लेकिन एक सवाल है, अपनी बॉडी की सर्विसिंग आखिर कब करोगे आप, और आखिरी बार कब की थी, कुछ याद है? एज अगर आपकी 30 साल की एज है तो उसके बाद हमारी बॉडी धीरे धीरे बदलना शुरू कर देती है। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ चीजें बिना किसी सिम्टम्स के भी बढ़ सकती है, जिसे ब्लड प्रेशर, कैलोरीज और ब्लड शुगर। और दिक्कत ये है कि कई बार इनका पता तब चलता है जब प्रॉब्लम काफी बढ़ चुकी होती है, इसलिए डॉक्टर रेगुलर हेल्थ चेकअप की सलाह देते हैं। एक सिंपल ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर चेकअप और बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग कई बार बड़ी प्रॉब्लम्स को शुरुआत में ही खत्म कर देती है। आजकल हम फिटनेस एप्स में स्टेप्स काउंट करते हैं, कैलोरीज ट्रैक करते हैं, लेकिन अपने हेल्थ नंबर्स, बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का पता ही नहीं होता है हमें। और दोस्तों, एक खास बात की हेल्थ चेकअप करवाना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बीमार है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि अपनी सेहत को लेकर आप सीरियस है। अगर आप 30 प्लस हो गए तो इस साल एक बेसिक हेल्थ चेकअप जरूर करवाएगा, क्योंकि सेहत की असली जीत तो समय पर जांच करने में है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और याद रखिए, आज का एक हेल्थ चेकअप कल की बड़ी परेशानी को रोक सकता है। स्टे ट्यून्ड।

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
3: Wondering what's next?
4: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
3: where innovation meets excellence. Admissions are open
4: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
3: across diverse fields from engineering and AI to law.
4: Apply now at www.mgmu.ac.in
3: or call 9067612000.

फरमाइश फरमाइश और फरमाइश, आपकी फरमाइशें पूरी करना मेरा काम है, मेरा अधिकार है। आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ, यानी कि मेरे साथ MGM 90.8 FM। और इस वक्त ना तो हम आपकी गाने की फरमाइशें पूरी करते हैं, तो आज हमारे पास गाने की फरमाइश आई है पवन काले जी की तरफ से इस गाने के लिए। फिल्म मेरा गांव मेरा देश जो कि 1971 में आई थी, इस फिल्म से ये गाना है मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अपने आप में ना तो ये गाना एक अलग ही एहसास समेटता है, और इस गाने को गाया था लता मंगेशकर जी ने अपनी जादुई आवाज में। एंड यू नो व्हाट, इस गाने के बोल मशहूर गीतकार आनंद बख्शी साहब की कलम से निकले थे, और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, जो कि बहुत मशहूर जोड़ी थी। और ये गाना फिल्म के उस स्पेशल मोमेंट पर आता है जब एक्ट्रेस ना तो कश्मकश में होती है कि लीड रोल में होते हैं धर्मेंद्र जी, उनको क्या कहा जाए, उनको कैसे बचाया जाए इन गुंडों की चाल से। तो आइए फिर दिल थाम के सुनिएगा खूबसूरत ये बेहतरीन सा गाना मेरा गांव मेरा देश इस फिल्म से आपकी फरमाइश पर। और हाँ, आपकी भी अगर कुछ फरमाइश हो तो आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर 9359320080।

0: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.
4: MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इज रेडी टू हेल्प यू मेक योर करियर इन होटल मैनेजमेंट, एविएशन, कलिनरी आर्ट्स, बेकरी एंड इवेंट मैनेजमेंट. जॉइन MGM यूनिवर्सिटी IHM. फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट नाउ एट 8793047544 और विजिट mgmu.ac.in.

अब कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है ना भाई, मैं गली गली से शॉर्टकट मार के चला जाऊंगा, लेकिन क्या है ना, बास की नजर और पुलिस वालों के कैमरे से कोई नहीं बचता है, समझे क्या? आई नो थोड़ा पंचर सा डायलॉग हो गया, लेकिन बात फतेह की है, आप गली से भी निकलोगे लेकिन कभी ना कभी रोड पर तो पहुंच ही जाओगे ना। अपने शहरातील मेन रोड वर सागुजा की वाहतूक पोलिसांचे अधिकारी आहेत आणि पोलीस कर्मचारी आहेत। सो देखो यार, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होगा बहुत सारा फाइन भरने के लिए, बिल्कुल हेलमेट मत पहनिए, क्योंकि आपके पास पैसा ही उतना है ना फाइन पे करने के लिए। लेकिन आपके पास पैसा ज्यादा भी है कम भी है, बट आप इस शहर के एक जागरूक नागरिक हो और आपको खुद के साथ अपने फैमिली की भी फिक्र होगी, तो हेलमेट जरूर यूज करें। क्या पता खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपकी जान बच जाए इस वजह से, ताकि आपने हेलमेट पहना हो तो कितना अच्छा होगा ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने हेलमेट नहीं पहना और आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपका पत्ता ही कट जाए। तो भाई बी सेफ बी केयरफुल। देखो भाई, तुम तो तुम्हारे पापा की भी बात नहीं मानते, मेरी क्या ही मानोगे, लेकिन मेरा काम है बताना, वही मैं बता रहा हूँ। आप घर के बाहर अभी निकलोगे और आपका चलान कट जाएगा, इससे बेटर है मेरी बात मानो और हेलमेट जरूर यूज करो। और बात याद रखिए, सर सलामत तो पगड़ी हजार, समझे? स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.
4: MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इज रेडी टू हेल्प यू मेक योर करियर इन होटल मैनेजमेंट, एविएशन, कलिनरी आर्ट्स, बेकरी एंड इवेंट मैनेजमेंट. जॉइन MGM यूनिवर्सिटी IHM. फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट नाउ एट 8793047544 और विजिट mgmu.ac.in.

0: तैयारियां शुरू है। आपने देखा होगा बहुत सारे मंडल तैयार हो गए हैं, उनके स्टेज डेकोरेशन शुरू हो गए हैं और कुछ गणपति बाप्पा का आगमन भी हो गया है अपने शहर में। तो इसी बात को लेकर ना और लोगों को सेफ्टी को लेकर प्रशासन ने कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी जारी किए हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया। आणि हो, या वर्षी ना तर एक नवीन नियम सुद्धा ऍड करण्यात आलेला आहे, ते म्हणजे तुम्हाला FDA ची सुद्धा परवानगी घ्यावी लागेल, म्हणजे अन्न व औषध प्रशासनाची तुम्हाला परवानगी घेणे कंपल्सरी आहे जर तुमचं मंडळ महाप्रसाद आयोजित करत असेल तर। तुमच्या गणेश मंडळामध्ये महाप्रसादाचं नियोजन असेल तर त्यासाठी तुम्हाला FDA ची ऑफिशियली परवानगी घेणं गरजेचं आहे, जेणेकरून जे आपण महाप्रसाद बनवतो ते एकदम चांगल्या प्रकारे असावं आणि जे साहित्य तुम्ही महाप्रसादासाठी युज करताय त्यात कोणती भेसळ नसावी, यासाठी FDA ची ऑफिशियल परमिशन तुम्हाला घ्यावी लागेल। और हाँ, इसी के साथ FDA अपनी आंखों में तेल डालकर काम करने वाला इस त्योहार के सीजन में, क्योंकि त्योहारों में मिठाई लगती है और मिठाई किस तरीके से बनती है, कितनी मिलावट होती है, ये हम सभी को पता है। तो यही मिलावट कम होना और लोगों तक जो प्रसाद है, जो मिठाई है, वो अच्छी तरीके से पहुंचे, यही इसके पीछे रीजन है। तो FDA अब हर एक मिठाई की दुकान पर जाकर चेक करने वाला है कि वहां पर जो मिठाई आ रही है त्योहार में वो मिलावटी मिठाई तो नहीं है, जो खवा है, जो दही है, जो तेल है, उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, ये सभी चीजें चेक होगी इस त्योहार के सीजन में। तो ये सारी बात याद रखिएगा और त्योहार होगा श्री गणेशा कीजिएगा। स्टे ट्यून
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: सोचो जरा, अगर आपका मूड ठीक ना हो और आप अनहैप्पी हो तो आपको ऑफिशियली छुट्टी मिल जाए तो क्या भाई, ये एक सपना ही है और सपना बन के रह जाएगा। बट देखिए ना कितना बढ़िया हो सकता है ना अगर ये सपना सच हो तो। मतलब अगर आप खुश नहीं हो तो ऑफिस मत आओ। मंडे मॉर्निंग बॉस का कॉल, अदनान ऑफिस क्यों नहीं आया? इसमें सर आज थोड़ा अनहैप्पी फील हो रहा है मुझे। बॉस, ओ कोई बात नहीं, टेक केयर। अरे ये तो इंडिया है, यहाँ तो एम्प्लॉई बोल दे सर मैं मेंटली एग्जॉस्ट होता हूँ। बॉस, अच्छा एक काम करो, पहले वो एक्सेल शीट कंप्लीट करो, बाद में तुम्हें जो करना है वो करो। और अगर सैलरी के बाद भी अनहैप्पी हो, एचआर बोलेगा सैलरी तो आ गई ना, हैप्पीनेस का क्या है, वो पर्सनल प्रॉब्लम है, तुम तुम्हारा देख लो। अब मैं इतनी अनहैप्पी वाली बातें क्यों कर रहा हूँ, मतलब मूड की, बिकॉज चाइना में एक ऐसा रूल आया है जहाँ पर ऑफिशियली अनहैप्पी लीव अप्रूव हुई है। मतलब अगर आपका ऑफिस आने का मूड नहीं हो, आप दुख में हो, आपको कोई स्ट्रेस हो, या बस आप थक चुके हो, यानी कि आप अनहैप्पी हो, तो आप ऑफिस नहीं आ सकते हो। और इसके बदले आपकी सैलरी वैलरी कुछ नहीं कटेंगी, उल्टा कंपनी बोलेंगी ठीक है अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख, जब तू ठीक महसूस करेगा तब ऑफिस आ जा। तो ऐसा रूल चाइना में आ गया है। उन लोगों के तो मजे है यार, वरना अगर ये रूल हमारे इंडिया में आता ना, ये जो आशिक प्रजाति है ना, ये सबसे ज्यादा छुट्टियां मारती। इनका तो आधे से ज्यादा हर दिन मूड अनहैप्पी होता ही है। बंदे का मैसेज नहीं आया, अनहैप्पी, तो कब तक बॉस भी झेलेगा उनको। बट ये रूल ऐसा चाइना में आया है, आई होप कि कभी तो ऐसा रूल हमारे इंडिया में भी आ जाए। और भले अनहैप्पी वाला ना आए, एक रूल आ गया ना तो एम्प्लॉय समाज खुश हो जाएगा, वो है वीकेंड। दो वीकेंड है ना, अब लोग कहेंगे यार हमें तो दो वीकेंड है। अरे भाई ऐसे बहुत से कंपनीज है जहां पर बस वीकेंड एक ही मिलता है, संडे को। सैटरडे के दिन भी काम करना पड़ता है, बस ये सैटरडे संडे वाला वीकेंड हर ऑफिस में कंपलसरी हो जाए तो मजे आ ही जाएंगे। सो एम्प्लॉयज को अनहैप्पी लीव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर क्या ही बोले, कुछ सपने सपने बनकर रह जाते हैं। किसी का सपना तो दो दिन वीकेंड एंजॉय करने का है, वो एक दिन का करता है, और किसी का तो अनहैप्पी लीव का है मेरे जैसे, जो कि कभी हो ही नहीं सकता अपने यहाँ पर। चाइनीज एम्प्लॉयज का तो मजे है भाई, बहुत ही अच्छा। खैर क्या ही बोले, स्टे ट्यून्ड।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: गाने की एक कहानी होती है, किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजी अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
1: ये गाना तो आपने सुना ही होगा ना,
2: सदम शिवम सुंदरम।
1: लता मंगेशकर जी की आवाज में ये गाना है और इस गाने के पीछे बड़ा ही मजेदार किस्सा है, वही आज हम जानेंगे। आरजी अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM। 1978 की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये टाइटल ट्रैक लता जी ने गाया था। डायरेक्टर राज कपूर से किसी बात पर बहस के बाद लता जी ने गाना गाने से इनकार कर दिया था। राज साहब ने लता जी को बहुत समझाया पर वो माने ही नहीं। तब राज कपूर ने फिल्म के गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा जी से बात की, जिन्हें लता जी पापा कहती थी। पंडित नरेंद्र शर्मा जी के कहने पर लता जी ने कहा कि मैं स्टूडियो आती हूँ, वो स्टूडियो चली गई। इस गाने में आलाप वगैरह होने के बावजूद भी 6 से 7 मिनट के गाने को लता जी ने एक टेक में रिकॉर्ड करके दे दिया था, यानी कि इतना मुश्किल गाना बस एक टेक में लता मंगेशकर जी ने गाया था। और ये किस्सा लिखा था दीदी और मैं इस किताब के अंदर। राज कपूर की बेटी रितु नंदा ने अपनी बुक में खुलासा किया था कि ये फिल्म राज कपूर ने लता जी से इंस्पायर होकर लिखी थी और वो लता जी को इस फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। बट इस गाने के पीछे ऐसा एक किस्सा था। चलिए फिर हम एंजॉय करते हैं यही सुपर डुपर हिट गाना सत्यम शिवम सुंदरम। गानों के किस्सों में हम हर दिन ऐसी एक गाने का किस्सा जानेंगे। स्टे ट्यून्ड विद आरजी अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
3: Wondering what's next?
4: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
3: where innovation meets excellence. Admissions are open
4: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
3: across diverse fields from engineering and AI to law.
4: Apply now at www.mgmu.ac.in
3: or call 9067612000.

0: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.
4: MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इज रेडी टू हेल्प यू मेक योर करियर इन होटल मैनेजमेंट, एविएशन, कलिनरी आर्ट्स, बेकरी एंड इवेंट मैनेजमेंट. जॉइन MGM यूनिवर्सिटी IHM. फॉर एडमिशन कॉन्टेक्ट नाउ एट 8793047544 और विजिट MGMU.ac.in.

90.8 FM। किसी से बात कर रही हो तो पहले कैसे लेटर लिखना पड़ते थे, वेटिंग लिस्ट में रुकना पड़ता था एसटीडी पीसीओ के, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। तो सोशल मीडिया के जमाने का फायदा उठाते हैं और हम सभी लोग ना तो 24/7 एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है RJAdnan। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कहना हो, आपको दिल की बात शेयर करनी हो, हैशटैग आपको कोई नहीं सुन रहा हो, तो मेरी जान मैं हूँ आपको सुनने के लिए और आपके प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। देखो मैं आपको जज नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिल में जो बात हो, मन हल्का करना हो, तो आप जब मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। आपकी बातें मेरे दरमियान ही रहेंगी और वो कहीं और जाएंगी नहीं। बस मन हल्का होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में क्या है पता है क्या, सुनने वाले बहुत कम है। हमें बताना तो बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग कहीं दिखाई नहीं देती है। हर किसी को कुछ बताए तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है। भाई हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस सुन के ले यार तू। तो वही सुनने का काम मैं करता हूँ ना, आपका भाई आपका दोस्त बनकर Adnan का वही काम है। सो बेझिझक कॉल कीजिएगा 8421247339 इस नंबर पर। नंबर फिर से एक बार सुनिए 8421247339। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हो RJAdnan इस इंस्टा पेज पर। अब इंस्टा पर आ ही गए ना तो वहां पर एक ग्रीन कलर का बटन है जिसको फॉलो बटन कहते हैं, तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो कर सके। वहां पर भी मैं आपको ना तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो इतनी दरख्वास्त है कि फॉलो भी कीजिएगा और अपनी बातें भी शेयर कीजिएगा। वादा करता हूं कि सुकून के साथ सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। बाकी आपका प्यार बरकरार रखिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति।

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
3: Wondering what's next?
4: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
3: where innovation meets excellence. Admissions are open
4: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
3: across diverse fields from engineering and AI to law.
4: Apply now at www.mgmu.ac.in
3: or call 9067612000.

0: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.
4: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-475-44 or visit mgmu.ac.in.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: ऐ मेरी हमरम, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
3: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो भी ना आती।

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
3: Wondering what's next?
4: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
3: where innovation meets excellence. Admissions are open
4: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
3: across diverse fields from engineering and AI to law.
4: Apply now at www.mgmu.ac.in
3: or call 9067612000.

0: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थनगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.
4: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-475-44 or visit mgmu.ac.in.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
3: Wondering what's next?
4: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
3: where innovation meets excellence. Admissions are open
4: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
3: across diverse fields from engineering and AI to law.
4: Apply now at www.mgmu.ac.in
3: or call 9067612000.

0: IIM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: Admission contact 93717142 65 or visit www.mgmu.ac.in.

गणपती बाप्पांचं आता आगमन होणार आहे, त्यासाठी आपण सर्वजण तयार आहोत. तो गणपति बाप्पा के आगमन के लिए तो हमारी सारी तैयारियां शुरू है. आपने देखा होगा बहुत सारे मंडल तैयार हो गए हैं, उनके स्टेज डेकोरेशन शुरू हो गए हैं और कुछ गणपति बाप्पा का आगमन भी हो गया है अपने शहर में. तो इसी बात को लेकर ना और लोगों की सेफ्टी को लेकर प्रशासन ने कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी जारी किए है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया. आणि हो, या वर्षी ना तर एक नवीन नियम सुद्धा ऍड करण्यात आलेला आहे, ते म्हणजे तुम्हाला FDA ची सुद्धा परवानगी घ्यावी लागेल, म्हणजे अन्न व औषध प्रशासनाची तुम्हाला परवानगी घेणे कंपल्सरी आहे. जर तुमचं मंडळ महाप्रसाद आयोजित करत असेल तर, तुमच्या गणेश मंडळामध्ये महाप्रसादाचं नियोजन असेल तर, त्यासाठी तुम्हाला FDA ची ऑफिशियली परवानगी घेणं गरजेचं आहे, जेणेकरून जे आपण महाप्रसाद बनवतो ते एकदम चांगल्या प्रकारे असावं आणि जे साहित्य तुम्ही महाप्रसादासाठी युज करताय त्यात कोणती भेसळ नसावी, यासाठी FDA ची ऑफिशियल परमिशन तुम्हाला घ्यावी लागेल. और हाँ, इसी के साथ FDA अपनी आंखों में तेल डालकर काम करने वाला इस त्योहार के सीजन में, क्योंकि त्योहारों में मिठाई लगती है और मिठाई किस तरीके से बनती है, कितनी मिलावट होती है, ये हम सभी को पता है. तो यही मिलावट कम होना और लोगों तक जो प्रसाद है, जो मिठाई है, वो अच्छी तरीके से पहुंचे, यही इसके पीछे रीजन है. तो FDA अब हर एक मिठाई की दुकान पर जाकर चेक करने वाला है कि वहां पर जो मिठाई आ रही है त्योहार में वो मिलावटी मिठाई तो नहीं है, जो खवा है, जो दही है, जो तेल है, उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, ये सभी चीजें चेक होगी इस त्योहार के सीजन में. तो ये सारी बात याद रखिएगा और त्योहार होगा श्री गणेश कीजिएगा. Stay tuned. Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: मुंह तो बंद करो अंकल।

0: Adnasi Baat with RJ Adnan. Only on MGM 94.8 FM. Saath hai to baat hai.
1: कभी कभी प्यार बड़ी जोर से नहीं आता, बस धीरे से दस्तक देता है। एक चाय की दुकान, एक किताब और दो अनजाने चेहरे। वो रोज उस दुकान पर आती थी अदरक वाली चाय और वही पुरानी किताब के साथ। और वो लड़का जो बस उसके आने का बहाना ढूंढता था, चाय तो कम पीता था लेकिन उसे बहुत देखता था। एक दिन हिम्मत करके उसने पूछा, आप रोज यही किताब क्यों पढ़ती हो? वो मुस्कुराई और बोली, क्योंकि हर बार इसे पढ़ते हुए कोई ना कोई नया चेहरा नजर आ ही जाता है। और फिर वो दोनों हंस पड़े। कभी किताबों की बातें शुरू हुई और फिर जिंदगी की। कहानी छोटी थी लेकिन एहसास गहरा था। कभी चिल्लाता नहीं, बस चुपचाप महसूस होता है।
0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM साथ है।

काय मग बसला का फाईन? हा सांगितलं होतं तुम्हाला पण तुम्ही ऐकतच नाहीयेत. आता विचार कराल की कसला फाईन, कारण की आपल्या छत्रपती संभाजीनगर मध्ये सुरू आहे हेल्मेट सक्ती आणि याबद्दल आपण आतापर्यंत ऐकलं असेल आणि तुम्हाला माहीत सुद्धा झालं असेल आणि अनेक जणांना फाईन सुद्धा पे करावं लागलं असेलच. त्यामुळं तो कहते ना ज्याचं जळत त्याला कळतं, त्यामुळे आता तुमचं जळालं असेल, आता तुम्हाला कळालं सुद्धा असेल. तर घरातून बाहेर निघताना हेल्मेट नक्की यूज करा. अब कुछ लोग कहेंगे की ठीक आहे ना भाई, मी गली गली से शॉर्टकट मार्केट चला जाऊंगा, लेकिन क्या ना बास की नजर और पुलिस वालों के कैमरे से कोई नहीं बचता है, समझे क्या? आई नो थोड़ा पंचर सा डायलॉग हो गया, लेकिन बात फतेह की है. आप गली से भी निकलोगे लेकिन कभी ना कभी रोड पर तो पहुंच ही जाओगे ना. अपने शहरातील मेन रोड वर जागोजागी वाहतूक पोलिसांचे अधिकारी आहेत आणि पोलीस कर्मचारी आहेत. सो देखो यार, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, बहुत सारा फाइन भरने के लिए, बिल्कुल हेलमेट मत पहनिए, क्योंकि आपके पास पैसा ही उतना है ना फाइन पे करने के लिए. लेकिन आपके पास पैसा ज्यादा भी है, कम भी है, बट आप इस शहर के एक जागरूक नागरिक हो और आपको खुद के साथ अपने फैमिली की भी फिक्र होगी, तो हेलमेट जरूर यूज करें. क्या पता खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपकी जान बच जाए इस वजह से, ताकि आपने हेलमेट पहना हो तो कितना अच्छा होगा ना. और ऐसा भी हो सकता है कि आपने हेलमेट नहीं पहना और आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपका पत्ता ही कट जाए. तो भाई बी सेफ, बी केयरफुल. देखो भाई, तुम तो तुम्हारे पापा की भी बात नहीं मानते, मेरी क्या ही मानोगे, लेकिन मेरा काम है बताना, वही मैं बता रहा हूँ. आप घर के बाहर अभी निकलोगे और आपका चलान कट जाएगा, इससे बेटर है मेरी बात मानो और हेलमेट जरूर यूज करो. और बात याद रखिए, सर सलामत तो पगड़ी हजार, समझे? स्टे ट्यून.

0: सोचो जरा, अगर आपका मूड ठीक ना हो और आप अनहैप्पी हो तो आपको ऑफिशियली छुट्टी मिल जाए तो क्या भाई, ये एक सपना ही है और सपना बनके रह जाएगा। बट देखिए ना कितना बढ़िया हो सकता है ना अगर ये सपना सच हो तो। मतलब अगर आप खुश नहीं हो तो ऑफिस मत आओ। मंडे मॉर्निंग बॉस का कॉल, अदनान ऑफिस क्यों नहीं आया? इसमें सर आज थोड़ा अनहैप्पी फील हो रहा है मुझे। बॉस, ओ कोई बात नहीं, टेक केयर। अरे ये तो इंडिया है, यहाँ तो एम्प्लॉय बोल दे सर मैं मेंटली एग्जॉस्ट होता हूँ। बॉस, अच्छा एक काम करो, पहले वो एक्सेल शीट कंप्लीट करो, बाद में तुम्हें जो करना है वो करो। और अगर सैलरी के बाद भी अनहैप्पी हो, एचआर बोलेगा सैलरी तो आ गई ना, हैप्पीनेस का क्या है, वो पर्सनल प्रॉब्लम है, तुम तुम्हारा देख लो। अब मैं इतनी अनहैप्पी वाली बातें क्यों कर रहा हूँ, मतलब मूड की, बिकॉज चाइना में एक ऐसा रूल आया है जहाँ पर ऑफिशियली अनहैप्पी लीव अप्रूव हुई है। मतलब अगर आपका ऑफिस आने का मूड नहीं हो, आप दुख में हो, आपको कोई स्ट्रेस हो, या बस आप थक चुके हो, यानी कि आप अनहैप्पी हो, तो आप ऑफिस नहीं आ सकते हो। और इसके बदले आपकी सैलरी वैलरी कुछ नहीं कटेंगी, उल्टा कंपनी बोलेंगी ठीक है अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख, जब तू ठीक महसूस करेगा तब ऑफिस आ जा। तो ऐसा रूल चाइना में आ गया है। उन लोगों के तो मजे है यार, वरना अगर ये रूल हमारे इंडिया में आता ना, ये जो आशिक प्रजाति है ना, ये सबसे ज्यादा छुट्टियां मारती। इनका तो आधे से ज्यादा हर दिन मूड अनहैप्पी होता ही है। बंदे का मैसेज नहीं आया, अनहैप्पी, तो कब तक बॉस भी झेलेगा उनको। बट ये रूल ऐसा चाइना में आया है, आई होप कि कभी तो ऐसा रूल हमारे इंडिया में भी आ जाए। और भले अनहैप्पी वाला ना आए, एक रूल आ गया ना तो एम्प्लॉय समाज खुश हो जाएगा, वो है वीकेंड। दो वीकेंड है ना, अब लोग कहेंगे यार हमें तो दो वीकेंड है। अरे भाई ऐसे बहुत से कंपनीज है जहां पर बस वीकेंड एक ही मिलता है, संडे को, सैटरडे के दिन भी काम करना पड़ता है। बस ये सैटरडे संडे वाला वीकेंड हर ऑफिस में कंपलसरी हो जाए तो मजे आ ही जाएंगे। सो एम्प्लॉयज को अनहैप्पी लीव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर क्या ही बोले, कुछ सपने सपने बनकर रह जाते हैं। किसी का सपना तो दो दिन वीकेंड एंजॉय करने का, वो एक दिन का करता है, और किसी का तो अनहैप्पी लीव का है, मेरे जैसे, जो कि कभी हो ही नहीं सकता अपने यहाँ पर। चाइनीज एम्प्लॉयज का तो मजे है भाई, बहुत ही अच्छा। खैर क्या ही बोले, स्टे ट्यून।
1: Only on MGM 90.8 FM.

सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सामड़ो रे सामड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: कभी तो हंसाए।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है।

लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप घर से निकल गई थी। उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।